नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी

0: पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान 228। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। सुनिए श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनिएगा। सात बजे से सुनिए भूली बिसरी गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम है राही प्यार के। त्रिवेणी 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12 हिंदी समाचार 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुनिए सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी 2:30 से सदाबहार नगमे। 3 सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिए का। प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुतकर्ता सुपैर खान। शाम 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वॉयलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 सुनिए नाटिका चांद की किरण। लेखन प्रेमलता जैन का, निर्देशन जनार्दन राय का। रात सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। 9 सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर।

रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करता है राघवेंद्र नेगी, आलेख और स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 228।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

царита.

0: श्रोताओं नमस्कार। सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित एसएल कंडारा जी को इस अंक से तबले पर संगति दे रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी, जो जाने माने तबला नवाज पंडित मदन मिश्र जी के सुपुत्र हैं और शिष्य हैं। संतोष जी, आपका भी विद्यार्थी के स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। पंडित जी, वायोलिन की विहंगमता के बारे में हमने अब तक चर्चा की
2: जी।
1: किस तरह से भारत में उसका आगमन हुआ, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने कैसे उसे अपनाया
2: जी।
1: और कौन कौन महान कलाकार हुए हैं इस वाद्य को लेकर के, और फिल्मों में किस तरह से वायोलिन का उपयोग हुआ है, ये सारी जानकारी पाने के बाद अब हमारे कान आतुर हैं आपका वायोलिन वादन सुनने के लिए। तो राग शंकरा से हम शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: राग शंकरा के बारे में, उसके चलन के बारे में
2: जी
1: हमें बताइए।
2: राग शंकरा देखिए बहुत प्राचीन रागों में से एक राग है
1: जी,
2: और शास्त्रों में इस राग का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन जो पंडित लोग हैं
1: जी
2: या उस्ताद लोग हैं इस राग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर जो जिन्होंने इसको सीखा है। हमारे गुरुजी ने मुझे जब राग शंकरा के बारे में डिटेल बताया
1: जी,
2: तो मुझे लगा कि उनका ज्ञान अगर नहीं मिलता तो ये राग से मैं वंचित रहता था, तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी
1: जी।
2: मैं शब्दों के बजाय कुछ बजा के बताऊं तो शायद ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं कुछ कोशिश करता हूं थोड़ी सी। देखिए राग शंकरा जो है उसमें आरोह में षडज के बाद गंधार
1: जी,
2: फिर पंचम, फिर निखात धैवत और तार सप्तक का साज, यानी गंधार पंचम धैवत और निखात और सा, यानी पांच ओडव जाति हो गई इसकी, पांच सुर लगते हैं। और अवरोह में सा नी ध पा गापा गारे सा, मध्यम नहीं लगता है, केवल मध्यम अवॉइड होता अवरोह में। अब इस पृष्ठता को केवल भरने से ही मालूम पड़ सकता है कि वो कैसे

धागा पानी सा। अब रिखब भी इसमें लगता है, पर वो वक्र गति से लगता है, धेवत भी लगता है, वो भी वक्र तरीके से लगता है।

अब ये जो सा ग प षड्ज गंधार और पंचम, ये सा प ग प रे ग रे ऋषभ जो लग रहा वो वक्र गति से लग रहा, खड़ा नहीं लग रहा। खड़ा लगेगा तो शास्त्रीय रूप से अमान्य होगा वो।

0: क्या बात है, बहुत खूब। पंडित जी, एक ताल में निबद्ध ये बंदिश जो आपने सुनवाई, लगता है इसकी शास्त्रीयता को, इस वातावरण की शास्त्रीयता को ऐसे ही रखा जाए और एक भजन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र की स्वरों में है।
1: बहुत अच्छा है।

0: रविशंकरा पर आधारित ये भजन अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की आवाजों में। श्रोताओं, इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुत

0: उसी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

उजाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बंधन फिल्म का गीत। लीला चिटनिस की आवाज है, प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और सरस्वती देवी ने इस गीत की धुन बनाई है।

0: कैसे छुपोगे, अब तुम कैसे छुपोगे।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
4: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अछूत कन्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सरस्वती देवी के स्वर में। गीतकार थे जे एस कश्यप और संगीतकार सरस्वती देवी। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3

0: आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए,

0: दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

0: इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं है। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह

0: नए हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा, घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मनपसंद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, अमित खन्ना के बोलते, राजेश रोशन का संगीत था।

0: रिक्शा वाला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथी की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और आर डी बर्मन में धुन बनाई थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है थी। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
4: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, और उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
3: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
4: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
3: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
4: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
3: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं बहुत छोटा सा अंतराल।

हम है रही प्यार के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। ये गीत है फिल्म फरिश्ता या कातिल का।

0: फरिश्ता या कातिल। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। अनजान के बोलते और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
3: कौन लाया कौन लाया।
4: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और

0: पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी आनंद बख्श
1: हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है आज्ञा दीजिए सविता सिंह को नमस्कार।

0: देश की सुरीली धड़कन 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
2: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक

0: रक्षात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है।

0: आवास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6 व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार।

0: उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
3: This year the government has announced

0: की। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी
1: और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाजों में गुरु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे A.R. रहमान। लीजिए अब सुनिए धड़क 2 फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में। संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: धड़क 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बात।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ऊंचाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जावेद अली, दीपाली सेठ, मधुवंती बागची की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे। अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। यह है सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें। मनोज मुंतशिर और साथी का लिखा हुआ ये गीत है। संगीत रोचक कोहली का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
4: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: बॉर्डर टू का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें थी दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर

0: शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: कुछ हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

परम सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य की। अमिताभ भट्टाचार्य ने बोल लिखे थे।

आज है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को बढ़ावा देना और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना है। ये दिन हमें सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए जन सेवा के इस पावन भावना को प्रणाम करें और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया जाए।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और साथी संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मालिनी अवस्थी की आवाज में हक फिल्म का ये गीत।

0: चाहिए वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता राज बब्बर जी का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सुनिएगा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर, सुनना ना भूलिएगा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। दोस्तों 23 जून को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन करोड़ों महिलाओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना है जो पति के निधन के बाद जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन महिलाओं के साहस, धैर्य और संघर्ष को नमन करने का दिन है जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। 2026 की थीम है विधवाओं के लिए न्याय, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जय बरुआ की आवाजें थी। जावेद अख्तर ने बोल लिखे थे और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी इसी गीत के। साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आप स्वस्थ, सकुशल और सानंद रहिए, इसी कामना के साथ आज के चित्रलोक कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: इसने कहा है शुदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शुदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में कभी...

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदनपुरी और ओम शिवपुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होकर बीआर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीनो रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था। वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया।

राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें।

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कला मंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रिपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

मौका इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सोहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहाँ भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम 5, कलयुग, राज और पूनम है।

प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए, आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो हम सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते
1: जी। तो क्या है, चेकअप का तरीका क्या होता है डॉक्टर साहब, फैटी लिवर का किस तरह की जांच पद्धति?

0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है. अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है. और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो. फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है. अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आया कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है. पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है. फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है. बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है. टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं. एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं. क्योंकि अगेन, अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है. कई नई अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं. थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में. तो एक MRI करके स्कैन आता है, जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है. अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से. अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं. पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है. बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं. अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे.
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है. खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई. डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए.
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया.
1: अच्छा.
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल. तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे. तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा.
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद.
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का.

0: स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने। फैटी लिवर, स्ट्रेस, वो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी,
0: जी
1: उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे
0: पढ़ाई
1: काम
0: कर
1: कर रहे
0: रहे
1: हैं,
0: हैं बच्चे।
1: स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा,
0: जी
1: एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है,
0: जंक फूड
1: जंक फूड खा
0: जितना
1: लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। द फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
0: जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूं अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
0: जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को?
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ,
0: जी,
1: क्योंकि लाइक थोड़ी बीट होनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना
0: क्या बात है,
1: मुझे
0: फिल्म का
1: पसंद
0: नाम
1: है।
0: भी सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि

0: बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, सब आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ,
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। तो हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
0: बिल्कुल
1: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: जो आकाशवाणी है प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको

0: चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
1: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहां पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई बघों चढ़ाव हो गई है, तो वो जो है फटाफट दौड़े दौड़े आए वो, और उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
0: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए आप।
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिन आई, लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम इनाम मिले हुए हैं पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
0: क्या क्या काम करते हैं आप, क्या कैसी नक्काशी करते हैं?
1: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत
0: जी
1: तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 100 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है,
0: जी
1: तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, और यारों का भी हमें ज्ञान मिला।
0: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और देशों में भी गए हैं, तो वहां से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहां?
1: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहां से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहां पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है उकेरा, तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया। और राजस्थान के हैं, और एक बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहां पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन किया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहां बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
0: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
1: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी,
0: जी,
1: तो वहां पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की है।
0: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है हस्तशिल्पियों को। इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
0: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
1: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
0: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
1: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे 2 बेटे हैं ये भी करते, कुलदीप सिंह जी हैं, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
0: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता है आपको?
1: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
0: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बिताए?
1: हाँ, हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई भी हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
0: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम, लोग इंटरेस्ट लें उसमें, युवा इंटरेस्ट लें?
1: हाँ, तो लोग 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 1 साल में कारीगर बन जाएगा वो। इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, उसमें मास्टर प्राप्त उनके पद पर जो है वो चुने, हमें चुने या किसी को चुने, तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाया उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्ट मैम के पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहां मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहां पर, तो वहां कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहां पर रहा। मैं
0: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अब तक आप?
1: 1970 से तो काम

0: में जुड़ा हुआ हूँ। काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती है, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे, सूरजकुंड मेला है, आगरा ताजमहल सब है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
0: हाँ, 7वीं पास किया था। मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने वाला इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना के बिक्री करें। तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया। और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई जाती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर
0: जी
1: जा
0: हाँ
1: सकता
0: जी,
1: है, तो
0: अपना रोजगार जो है खुद मतलब चला सकता
1: और फेमस भी हो सकता है, फेम भी पा सकता है।
0: जी। मुझे एक साहब मिल गए थे वहीं उड़ीसा प्रोग्राम में, तो आए, उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है। तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ। तो बहुत खुश हुए वो
1: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा हैं खास तौर से, तो
0: जी।
1: उनके लिए क्या कहने चाहिए?
0: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में, तो जब रुचि होगी अभी तो काम कर पाएगा। रुचि है उसको कंप्यूटर के काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी ये महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है एक तरह से, ही ये जिंदा रहे।
0: टैली सेंटर खोलने चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, मोल्डिंग का हो, हाँ दो दो मतलब वो रखने चाहिए कि सिलाई का हो, वेल्डिंग का हो।
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया
0: हाँ
1: जाए उसको।
0: जी, जहाँ जहाँ इसके उद्योग हैं,
1: जी,
0: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का काम वहाँ होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूंगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है, जो कि वहां से हमें काम सिखाया हमें लगन से, वो हमने भी रुचि से सीखा। और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है।
1: अच्छा,
0: हम बराबर काम कर रहे हैं, बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा।
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा है?
0: ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाएगा, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाएगा। तो हमारी मिसेस ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले। हाँ बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहे, मतलब हिम्मत नहीं आ रही हम। हाँ काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजी लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: जब गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वोमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के

0: आ रहा है,
1: जी
0: तो जो हमारे खाने के पाइप होती है, सॉफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा। कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ, लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है।
1: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
0: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ। जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
0: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे आईबीएस बोला मैंने पहले,
1: जी जी जी।
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक का कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के

0: पूरक है और वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
0: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहां तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयां जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी।
1: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डालने, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहां से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: नरेंद्र चंचल की थी, फिल्म का नाम था बॉबी। इस गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का भजन। इसे संगीत में ढाला है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं।

0: काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
1: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
0: मैं गांवों की पैदावार हूं, अनंतनाग का रहने वाला हूं। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था। सेवा के सारा आयामों में और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े।
1: जी,
0: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है,
1: जी,
0: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती है। संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़ें, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
1: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है, आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
0: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेकर वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है।
1: जी,
0: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर। स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है, वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं। हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं, वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं।
1: जी,
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं। अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया। ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो।
1: जी,
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, उनकी नजदीकियां ना बढ़े।
1: जी,
0: वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर, जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना है। मैं तो ये समझूंगा इस वक्त जो टॉर्च बेयरर्स कश्मीर में हैं, जो मैं काम करता रहता हूँ, मुझे लगता है ये यही यूथ है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, हमें तो अब फॉलो करना चाहिए, हमें इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में, हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता, तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता। तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है ICYC एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा प्यान से निकलेगा, और इसके रिजल्ट्स निकल गए। अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है, तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है। हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है, और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं, और रिजल्ट है। हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है। इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है। तो ये रियलाइजेशन आने लगी, और खासतौर पर पेरेंट्स जो हैं वो ये समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम्स है, हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है, वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहाँ हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, ज्येष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है।

0: जैनी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ की ये गजल। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

0: ऐसा रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में अमीर खुसरो की ये रचना। और ये आवाज है विशाल मिश्रा की, आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

केसरिया बालम आओ नी पधारू मारे देश। मेहदी हसन की आवाज में अभी आपने ये मांड गायकी सुनी और इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी,

0: विश्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला यह समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी अपनी फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना, गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल के, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

रविंद्र जैन का संगीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ी। फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: महेंद्र कपूर की आवाज फिल्म का नाम आज की आवाज। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: वाह वाह प्रभात वाह,
1: बहुत भी तालियां उनके लिए,
0: मजा आ गया, कमाल कर दिया, थैंक यू।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए निदा फाजली की रचना, मनहर उदास की आवाज, उषा खन्ना का संगीत और फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुन

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों, आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे? लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर

हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए, मेरे साथ है भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा, जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्य धारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

जाएंगे।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: जी तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है। छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदे और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रूमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती हैं। ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दें ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ओलाकुड़ा ओलापुरा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाती से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिन्दी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाती का रोमांस बेहद जादुई होता है, जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के

करीब लाते हैं। तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का ये रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूँ। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

लता मंगेशकर और मन्ना डे को आपने सुना। फिल्म का नाम था श्री 420। गीतकार शैलेन्द्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ थे और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे, ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुना ही नहीं। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है। गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब हैं काला बाजार में, शैलेंद्र की रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छत्री प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छत्री धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है, यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे, तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल, आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपके कुछ गीत हमारे गीतों से, हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य, ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं का खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है और बारिश में छाती के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया और बहुत सारी गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा अच्छा मैं की नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं, यहां उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, एसडी बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना। अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहां बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10-15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहां तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई है, देखते हैं हमारे शहर में कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहां बारिश हुई कि नहीं। और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिलों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाये हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिये, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भाई दशकों तक मुख्यधारा

परंपरा की हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं, एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी, मैं ये भी लिख सकती थी कि वे आज कुछ ऐसे गीत है जहां इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारे बरस रही हो और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हो तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है। दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की मैं इस रैली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है। चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है। पता है क्यों नहीं लिखे गीत? क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है। बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए। लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान हैं तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ। हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ। छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि ये बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और न कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अलनीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा, एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहां सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी, भीग जाएंगे, याद रखिए, अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला न जाए, तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं, या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था, तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल, यही जिंदगी है, और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि, लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार एमपी में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी कोई ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजीनगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारिक के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात दो घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ की बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब वो दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छांव मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं एक लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है, लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरूआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद

0: 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स .in, थ्रिष्टी, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज डडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: दे ऑल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत

में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी।

0: अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमरीका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमरीका के सांता क्लारा में ग्रुप जे

0: मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओ, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके

0: मन में भी आ रहा होगा और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहाँ के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ, चल कर, चल, अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे, अरे चल ना, जल्दी कर।

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बागत होगी, इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोस

0: नदी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपने जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना?
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चलो। ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झूला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो?

0: हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
0: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
0: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझाकर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो चलो, जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, हीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती की, हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डैम की। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया चोरी,
1: बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीजें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड

0: सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
1: बिल्कुल आरती, और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन, जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन ज्योति भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
0: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं, तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है, जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN, जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती, तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहां हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल, और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है, उसके जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल, और पेंशनभोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
0: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
1: और आरती, देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है, उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है, कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
0: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीजें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है तो उस

0: कि उसके लिए हम अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, आरती नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन्स को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास न हो सके।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजीर, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना हो
1: खुद ही फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है
0: जी।
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और

0: उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: बिल्कुल काम। पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बड़के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: बिल्कुल, और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो,
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। अगर

0: दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो।
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए। जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए, हाँ। आग में घी डालने वाली बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा है। चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1, 2, 3, 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, आग आज में लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है, बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होती है। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।

0: तो ये नहीं कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित रखे,
1: समझाने जी करें। ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
1: अब बताओ तुम क्या करते?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: मंत्र आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देशभर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्रशेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में

0: कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं।
1: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
0: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया एआई के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
1: जी,

0: तो देखो भाई हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करनी
1: है। बिल्कुल आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठकर ही चारपैया होती थी नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे और वहीं

0: सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो काम
1: कुछ.
0: होते थे सब वहीं होते थे. और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी और उसके लिए पूरा घर जुट जाता
1: बिल्कुल
0: था.
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था.
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे. और जो उत्सव त्योहार होते थे यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी उसके उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है. और गर्मियों के दिन में हाँ तुम क्या
1: हाँ, मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था. क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था बूंदे गिरती थी छप छप छप छप इतना मजे आते थे कि मतलब
0: तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी
1: ये
0: भर जाए.
1: मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं सभी की होंगी. सभी के घर आंगन जिनके घरों में आंगन बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे. वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना वहां पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे.
0: देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे. आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे बड़ा मजा आता था. उसी में छोटे बच्चे वहीं नहाते धोते नहाना धोना कपड़े धोना मम्मी लोग का पकवान बनाना दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था. और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था तो चावल के पानी से मार दिया मार निकाल करके उसको साड़ियों पर मार देते तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर करते थे तो बहुत मजा आता था.
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं साझा करते हैं तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से.
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था. जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा वो भी बहुत यादगार है. और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में. बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे. प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए रोशनी थी हवा थी आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था. और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी.
0: क्या बात है. और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था वो उस घर की सांस है धड़कन है. आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी. जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे. आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान जहां सुबह की पहली किरण बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी. मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय. और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं. सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी. इसी आंगन में गिरे और संभले भी यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई. घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है. उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ. हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है. बहुत सारी यादें साझा करिए. और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे जब ढोलक पर जो गाने बजते थे सारी औरतें मिलकर गाती थी नाचते थे बच्चे भी नाचते थे तो बहू बेटे सब क्या है मतलब एक समा बन जाता था.
1: बिल्कुल. और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी. यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी. और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था।

0: सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहां जहां आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी।
1: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना वहां कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठकर आंगन में, ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब लोग
1: मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का,
0: आनंद उठाते हैं गीत।
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया,
1: इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए, तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना आ भी जाना इंतजार है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर सा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: बेखबर
3: दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। किसी की माँ छीन लेता है, किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की।

0: वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ वो सुना दें आप, मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
3: ऐसा एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष बनी रही।
2: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, या फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहाँ मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश के घर के कोने में बंद हो गई थी। और मेरी उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
2: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
3: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था, और मेरा गला बाकी बचपन से बहुत अच्छा था, तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश, कभी कुछ सिखा जाते थे। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला, और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं, ये कभी मेरा

0: क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता। कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
1: आकाशवाणी से बात करने के आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे मनीष सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
4: हाँ, सूरत में।
3: जी, सूरत में जी। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
4: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
3: जी।
4: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की
3: जी, शीनकाफ निजाम भी आया था इसमें।
4: शीनकाफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था
3: जी।
4: अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है
3: कुंडली आपकी पता है लेकिन अभी श्रोताओं तो सारी
4: तो, उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
3: जी,
4: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीनकाफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
3: जी, सब जी।
4: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
3: जी,
4: मुल्क
3: जी,
4: में
3: जी।
4: संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था।
3: हाँ।
4: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
3: जी जी।
4: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे
3: जी, जी, जी।
4: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामयीन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
3: और जावेद प्रूफ करने का जरूरी था।
4: हाँ, जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था, मैं तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी और वो

0: क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी। दीवारों के बीच वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ।
1: क्या बात है,
0: है ना।
1: काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों

0: मैंने उस किताब पर डिस्कस की तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था।
1: जी जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब एकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है।
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी है।
0: अच्छा। और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है।
1: जी, जी।
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में रफिया शबनम आबिदी साहिबा, लेकिन सामीन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर के, किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर, नहीं करता।
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली।
1: जी जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक।
1: ओहो।
0: इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया।
1: जी जी।
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जादे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।

0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ मैं
1: जी,
0: मैं
1: जी,
0: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो।
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी।
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं पता।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था, तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी अस्सी तक,
0: भीड़
1: और अस्सी तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं, लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी।
0: जी।
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खासतौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: वो सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त आए।
1: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ। वो जो स्कूल

0: जहां पढ़ता था वहां जाता हूं अकेला और उसको फील करता हूं, मैं सिर्फ फील करता हूं खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ है।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार,
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने जी। ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है।
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी,
1: तो रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है। हाँ,
0: तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी।
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है

0: कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर। मर गया ये, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह,
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहां से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
1: मतलब
0: अभी भी जैसे तू है, है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी,
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना है, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही न हुई।
1: क्या बात है, वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही न हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही न हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही न हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही न हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया सुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी युववाणी होस्ट और दोस्त पिंकी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी आज की चर्चा और साथ ही कराएंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर समाज और देश के प्रगति के पीछे लोक सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी योगदान के कारण हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी सुविधाएं होती हैं जो हमें आसानी से मिल जाती है। इन सुविधाओं की बात करें तो स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं की सुविधा पहुंचाने और विकास को गति देने में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, देश और समाज के प्रति लोक सेवकों के इसी महत्व को समझते हुए हर साल 23 जून यानी आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी संबंध में चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के उद्देश्य के बारे में। साथियों, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना कि सरकारी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमारे जीवन में कितनी जरूरी है और जो लोग ईमानदारी और मेहनत से जनता की सेवा करते हैं उन्हें सम्मान और प्रेरणा देना है। साथ ही सरकार को नई तकनीक और अच्छे तरीकों से सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित करना, लोक सेवाओं में नए और रचनात्मक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सेवाओं में ईमानदारी और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण युवाओं को लोक सेवा में करियर बनाने और समाज के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, ये तो थी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के उद्देश्य। साथियों, लोक सेवा दिवस के बारे में सरल शब्दों में कहें तो यह दिवस हमें याद दिलाता है कि अच्छी लोक सेवाएं ही एक मजबूत और विकसित समाज की नींव होती है। चर्चा हम यूं ही बरकरार रखेंगे, पर उससे पहले वक्त हो गया है फिल्म संगीत का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फिल्म भुज से अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूत से अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। साथियों आज का यह दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के साथ एक और महत्वपूर्ण दिवस के लिए जाना जाता है जो हमें खेल खेलने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह दिवस युवाओं के लिए बेहद खास होता है क्योंकि यह उन्हें खेल स्वास्थ्य और अच्छे मूल्यों की ओर प्रेरित करता है और साथ ही यह दिन खेलों के माध्यम से एक बेहतर और सकारात्मक जीवन जीने का संदेश देता है। युवाओं को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है और देश के लिए कुछ करने का अवसर देता है। इसके साथ ही खेल जाति धर्म भाषा से उठकर लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। इससे युवाओं में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है और आज के समय में जब हम मोबाइल और ज्यादा स्क्रीन में समय बिताते हैं तब यह दिन उन्हें खेलकूद की ओर आगे बढ़ाता है। खेल हमें समय की कदर करना और खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं और हार जीत को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके युवा अपना भविष्य भी बना सकते हैं और देश सेवा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों आज का यह दिन हमें सिखाता है कि मेहनत और लगन से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के महत्व के बारे में। चर्चा हम आगे और भी करेंगे पर उससे पहले वक्त हो गया है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर से ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में फिल्म यहाँ के जो जीता वही सिकंदर से ये गीत। वक्त हो गया है एक बार फिर ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन।
4: सुनिए सुनिए सुनिए, 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों जब भी हम अपने आसपास किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये लोग अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है, मेहनत और धैर्य। ये दोनों सफलता के ऐसे स्तंभ हैं जिन पर बड़ी उपलब्धि टिकी होती है। तो आइए दोस्तों इसी संबंध में हमारी चर्चा का अगला विषय है मेहनत और धैर्य, सफलता के मूल मंत्र। दोस्तों मेहनत वह शक्ति है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देती है। बिना मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बारे में कहा भी गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। इसके बाद बात करें धैर्य की तो धैर्य का मतलब है कठिन समय में भी शांत रहना और हार न मानना, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए समय लगता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, ठीक वैसे ही मेहनत का परिणाम भी धीरे धीरे मिलता है। परंतु इन दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर केवल मेहनत हो लेकिन धैर्य ना हो तो इंसान जल्दी हार मान सकता है, और अगर केवल धैर्य हो लेकिन मेहनत ना हो तो सफलता संभव नहीं है। मेहनत और धैर्य मिलकर हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और धैर्य बनाए रखता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। लगातार मेहनत करो और धैर्य रखो, सफलता खुद आपके पास आएगी। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको सफलता के मूल मंत्र मेहनत और धैर्य के बारे में। वक्त हो गया है दोस्तों मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं फिल्म फन्ने खां से सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म फन्ने खां से सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति माने जाते हैं। उनकी सोच, ऊर्जा और नए विचार किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए युवाओं के लिए माई जीओवी इंडिया और यूथ वॉइस जैसे प्लेटफॉर्म की शुरूआत की गई, जहां आम नागरिक, खासकर युवा, अपनी राय और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इसी संबंध में हमारी चर्चा का अगला विषय है माई जीओवी इंडिया और यूथ वॉइस के बारे में। दोस्तों माई जीओवी इंडिया भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शासन से जोड़ना है, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय देना और नए आइडिया देकर योगदान देना है। वहीं यूथ वॉइस का मतलब युवाओं की आवाज और उनके विचार, जो समाज और देश में बदलाव ला सकते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आज के युवा देश का भविष्य है। माई जीओवी इंडिया और यूथ वॉइस मिलकर युवाओं को अपनी सोच और विचार व्यक्त करने का अवसर देते हैं। अगर युवा सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाए तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपने विचार या कोई आइडिया देकर देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप भी माई जीओवी इंडिया और यूथ वॉइस का उपयोग कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म खासकर युवाओं के लिए है। तो दोस्तों वक्त हो गया है मनोरंजन का, आइए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल से हर्षदीप कौर और आरिफ लोहार की आवाज में ये गीत। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं, परेशानियों या खुशियों को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मन की बात साझा करने से मन हल्का होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों से खुलकर बात करते हैं तो न केवल हमें सहारा मिलता है बल्कि सही मार्गदर्शन भी मिलता है। मन की बात मन में रखने से तनाव बढ़ता है, जबकि अपनों से बात करने से समाधान के रास्ते खुलते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। मन की बात अपनों के साथ बांटने से केवल दिल हल्का नहीं होता बल्कि रिश्तों में प्यार और विश्वास भी बढ़ता है। तो दोस्तों आप भी अपने मन की बात अपनों से करने में बिल्कुल भी झिझक ना दिखाएं। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारा कार्यक्रम रोज शाम 5 बजे न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन सकते हैं और अपने सुझाव हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज @AkashwaniJhansi के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुझे यानी आपकी युववाणी दोस्त पिंकी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में ये भजन आप सुन रहे थे हरिहरन के स्वर में। आगे भी आपको और भी भजन सुनवाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी कलाई होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में हरिहरन हरिओम शरण उदित नारायण के स्वर में ये भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भजन संध्या का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे बारे सवई किसान पंच भैया रो स्वीकार रो संतोष पाल
1: और पुष्पिन भैया की नमस्कार।
0: नमस्कार। हाँ तो पुष्पिन भैया देखो अपन और आशा करत के अपने किसान भैया आ रहे हैं भी नौनी हुई हैं स्वस्थ हुई हैं और अपनी खेती बाड़ी के काम भी निपटा रहे हुई हैं। और देखो पुष्पिन भैया सरकार अब एक अभियान चला रही तो किसान भैया आ रहे हैं ये बात के जानते ही और वे भी अब जागरूक हैं वे भी जानते ही कि जो अभियान को नाव है खेत बचाओ अभियान। तो भैया अपन सोच रहे हुई हो कि

बाकी का जरूरत पड़ी जो खेत बचाओ अभियान, खेत तो वैसे ही बचे, खेत तो वैसे ही है। तो भैया रो के ये को मतलब जो कि अपनी जो खेतन की जो माटी है, उपजाऊ माटी है, जो खेतन की जैसे मेड़े नहीं डरी जाती, बनिया नहीं डरी जाती, तो जो बरसात को मौसम आता ही उ मौसम में अपने खेतन को जो छनका होता ही, अपन स्थानीय भाषा में बोलत जो ऊपरी सतह पे जो माटी पाई जाता ही, भाई उपजाऊ होता ही और बरसात के पानी के संगे बह के निकल जाता ही, तो ऊखे बचाने। और अपन जो देखते ही के जो खेतन की जैसे कि तुम भाई कटा यानी कि बनिया कट जाती तो भाई भी पानी निकल जाता, तुम्हें भी छनका बह के निकल जाता ही। और अपन जब अपनी फसल खेतन में लेते ही उबेरा अपन के उतरा के देखो रासायनिक खादन को भी प्रयोग करत और कीटनाशक दवाइयन को और खरपतवार नाशक दवाइयन को, ऐसी दवाइयन को प्रयोग कर जो रासायन से बनी होती, तो उनसे अपनी खेत की माटी जहरीली हो जाता ही और खेत की माटी को स्वास्थ्य बिगड़ जाता ही, बीमार पड़ जाता ही। तो ऐसे में अपन खे इनकी खेतन की माटी के बचाने, स्वास्थ्य को बरकरार रखने, उपजाऊ क्षमता बनाए रखने और प्राकृतिक खेती अपनाने। देखे कल लगत प्राकृतिक खेती का होती ही तो किसान भैया जो तो अपन सब जने जानत के जो प्रकृति में उपलब्ध होती चीजें, जैसे अपन वाले अपने का जो कार्बनिक पदार्थ होते ही, अपन यानी कि अपने पशुधन को जो गोबर होते ही, मलमूत होते ही, वो एक जगह घूरे पे इकट्ठो करत रहते ही, वो खाद बनके तैयार होते ही, एक साल में एक चौमासो खा जाते ही, सड़ जाते ही और फिर अपने खेतन में बिखेरत और फिर उ खेतन से अपन फसल लेते ही, तो प्राकृतिक खेती कहो जाते ही। और भैया रो अपन खे अपनी खेतन खे जैसे इस तरह से बचा के ई अभियान खे सफल बनाने। और अब तनक रुकत और सुनत जे संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहे?
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब?
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
6: पर हम तो सब यही डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच है?
5: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
8: और किसान भैयाओं, देखो परंपरागत खेती को जैसे अपन ने अब जो संदेश सुनो, तो संदेशन के माध्यम से भी देखो किसान भैयाओं, अपन का कछु न कछु जानकारी, कछु न कछु सूचनाएं हम देते रहते हैं, तो संदेशन का भी बड़े गौर से और लगन से हमारे किसान भैया जरूर सुन में, कैसे कि इनके माध्यम से भी अपन का कठिन न कठिन वैज्ञानिक जानकारी देते रहते हैं। परंपरागत खेती और इके संगे संगे गौ आधारित खेती, जैविक खेती और वैदिक खेती, ये जितनी भी खेती है इनको स्वरूप एक ही है, केवल कार्य करने को तरीका अलग अलग है, थोड़ा सो फर्क है, ज्यादा कछु नहीं है, लेकिन सबको एक ही मतलब है कि जहर मुक्त खेती, यानी हमें अपनी जो खेती करने वो खेती में जो भी फसल हम ले रहे हैं वह फसल का जहर मुक्त अपन का उत्पाद लेने हैं। जहर मुक्त अगर उत्पादन अपन का लेने हैं तो

0: पानकी वगैरह का कार्य करते हैं
1: जी।
0: और जिससे कृषि की सारी जरूरतें और जिससे कि मानव जीवन के लिए जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, चाहे वो फूड भोजन
1: जी,
0: पशुओं के लिए चारा
1: जी,
0: इमारती लकड़ी
1: जी,
0: चारा और ये आपके कपड़े पहनने के लिए जो रेशा उत्पादन होता है, फाइबर
1: जी,
0: ईंधन
1: जी
0: और फंड पैसे, तो कृषि की सारी जरूरतें इस मृदा से पूरी होती है। अब इतने महत्वपूर्ण इस प्राकृतिक संसाधन का स्वास्थ्य की जो बात आती है कि इसका स्वास्थ्य क्या है, तो आजकल जो है मृदा स्वास्थ्य के बारे में बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि मृदा स्वास्थ्य मृदा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का वातावरण को हानि पहुंचाए हुए कृषि संबंधी कार्य करना एवं पशुओं की और मानव जीवन की और फसलों के स्वास्थ्य को बरकरार रखना।
1: नहीं तो इसको कैसे बढ़ाया जा सके मृदा को,
0: मृदा के स्वास्थ्य को। हाँ हाँ, ये भी आपका एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखा। देखिए, पहले की जो खेती थी और इसके बाद हरित क्रांति जब आई, तो हरित क्रांति का उद्देश्य था कि नई नई प्रजातियों का समावेश करना और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना,
1: तो अधिक उत्पादन,
0: अधिक उत्पादन लेना। उसके खामियाजा ये हुए कि आज पूरे देश में
1: जी
0: जमीन ने अपनी उत्पादन क्षमता खो दिया है
1: जी।
0: मैं आपको हरियाणा और पंजाब जो कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च
1: स्थान पर,
0: वहां के किसानों के बड़े बड़े समूह
1: जी
0: अपनी जमीनों को बेच रहे हैं और बेच के दूसरे देशों को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी ने उत्पादन क्षमता खो दिया है।
1: मतलब ज्यादा रासायनिक खाद,
0: हाँ, ज्यादा रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी के अंदर जो भी माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं लाभदायक, उनकी संख्या कम हो गई, वो मर गए तो मिट्टी बंजर हो गई। तो आजकल का जो इसका मृदा का स्वास्थ्य का एक कॉन्सेप्ट है वैज्ञानिकों की तरफ से, जो मेरी सलाह है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहले ये कि ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करें,
1: मतलब जैविक खाद,
0: जैविक खादों का प्रयोग करें, फसल अवशेष का प्रयोग करें, हरी खाद का समावेश करें और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें। हम जी
1: जी जी, तभी उत्पादन बढ़ा जा
0: सकता, तभी उत्पादन बढ़ेगा, स्थायी उत्पादन होगा, उत्पादन घटेगा नहीं, मिट्टी की क्षमता खोएगी नहीं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठाएंगी।
1: जैसे एक और सवाल आता है, जैसे मृदा परीक्षण क्या है और कब हमारे किसान भाई ले,
0: हाँ,
1: किस समय कराना चाहिए मृदा परीक्षण?
0: जी जी जी, मृदा परीक्षण जो है ऐसे है कि जैसे कि किसी इंसान का स्वास्थ्य खराब हो गया
1: जी,
0: फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, तो मृदा परीक्षण कार्यक्रम क्या है, ये तो इस समय सॉयल हेल्थ कार्ड योजना चली है भारत सरकार की फरवरी 2015 से
1: जी,
0: कि प्रत्येक किसान के खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए।
1: तो ये है
0: क्या विपिन जी, हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है कि मिट्टी का नमूना लिया जाता है,
1: तो मिट्टी का नमूना किसान भाई जैसे कहाँ से लें?
0: अब इस समय ये आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि जैसे इस समय खेत में फसल खड़ी है
1: जी,
0: मिट्टी का नमूना कैसे लें? तो नमूना लेने का उचित समय ये अभी नहीं है, हम आपको ये बता दें किसान भाइयों को, अगर इन केस नमूना लेना जरूरी है तो फसल के बीच में जो दो लाइनें हैं और दो लाइनों के बीच की जो मिट्टी है तो लिया जा सकता है। नमूना लेने का उचित समय फसल कटाई के बाद, बुआई के पहले, खेत की अंतिम तैयारी के समय, मृदा का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है जो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करे, उस सैंपल को प्रोसेस करने के बाद जिला स्तरीय या तहसील स्तरीय जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वहां पे आप भिजवा देंगे
1: जी।
0: किसान भाई उस सैंपल में लिखेंगे किस तारीख को सैंपल लिया गया
1: जी,
0: किसान का नाम, किसान के गाटा संख्या का नाम
1: जी,
0: और कितनी जगह से सैंपल लिया
1: जी,
0: और आगे कौन सी फसल बोने के लिए सैंपल ले रहे हैं
1: जी।
0: इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मृदा नमूना खेत के किनारे किनारे जो है,
1: मेड़ के किनारे से नहीं लेना है,
0: हाँ हाँ, उसको छोड़ देना है, बॉर्डर इफेक्ट छोड़ देना
1: जी,
0: और जहाँ पर खाद हो, खाद के ढेर हो, वहां से नहीं लेना है,
1: पेड़ के नीचे,
0: पेड़ के नीचे से नहीं लेना है, छाये से नहीं लेना है
1: जी,
0: और उसको लेने के बाद, उसका करने के बाद उसको प्रयोगशाला में भेज देते हैं
1: जी।
0: तो प्रयोगशाला में जब भेजते हैं तो उसकी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड बनती है विपिन जी, और उसके बाद उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि मृदा का जो अभिक्रिया है, पीएच क्या है,
1: पीएच मान उसका क्या है, मतलब कितने आवश्यकता है, मतलब उसको
0: अम्लीयता है कि क्षारीयता है, कितने पोषक

0: तत्व हैं। और उस पूरे रिपोर्ट में यह भी लिखा रहता है कि अगर कोई विशेष समस्या है मृदा में, कोई निचली सतह में, कड़ी सतह में परत है
1: जी,
0: तो अगर गेहूं उगाना है तो इतना नाइट्रोजन है
1: जी,
0: और इतना नाइट्रोजन आपको खाद और उर्वरक के रूप में देना, तो पूरी संस्तुति उस कार्ड में लिखी रहती है। किसान भाई उसको देखकर ही और परीक्षण की संस्तुति के आधार पर अगर उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है
1: तो निश्चित है कि हमारे किसान भाई की जो आय
0: लाभान्वित होगा,
1: लाभान्वित होगा, और भी बढ़ेगी उससे,
0: बिल्कुल आय
1: बढ़ेगा, जो मृदा का स्वास्थ्य वो भी अच्छा रहेगा,
0: अच्छा रहेगा।
1: लेकिन आजकल अपन देखते हैं जो परंपरागत खेती की बात करते हैं तो आधुनिक एवं परंपरागत कृषि क्या है
0: जी? जी जी जी,
1: आधुनिक कृषि के लाने और जो फायदे हैं और उनका नुकसान के बारे में क्या?
0: देखिए जो वैज्ञानिक एक तरीका है, तो आधुनिक जो आधुनिक खेती की बात की जा रही है
1: जी,
0: तो अभी तक हरित क्रांति में आधुनिकता का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा खाद और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें हम सिंचाई में, उर्वरक देने में और रोग और कीट प्रबंधन में। हम तो आधुनिक खेती उसको कहते हैं कि सारी चीजों का एक समावेशन होना चाहिए। आज के परिदृश्य में अगर हम पूरी तरीके से रासायनिक खादों को कम कर देंगे, पूरी तरीके से अगर हम कम करने की सलाह दें तो उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जमीन
1: हाँ,
0: तो एक जो इंटीग्रेशन की बात आती है कि हरी खाद, गोबर की खाद, जैविक खाद और ये सारी चीजों के साथ साथ धीरे धीरे रासायनिक पदार्थ की मात्रा कम होते जाए, तो हम इसको आधुनिक मानेंगे, जिससे हमारे जो मृदा के मित्र हैं, फसलों के मित्र हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो इनका भी रहना जरूरी है इस परिस्थिति की तंत्र में।
1: अब जैसे उत्पादन बढ़ेगा मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल होगा, तो आधुनिकता यही है कि हम अपने खेती के और कृषि के विकास के साथ साथ अपने जैविक संतुलन को बनाए रखें।
1: परंपरागत खेती बोलते जैसे पहले जो आदमी करते थे हमारे किसान भाई जो पहले करते आए थे, जैसे मान लो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, वही हुई ना परंपरागत?
0: परंपरागत नहीं है
1: जी,
0: गोबर की खाद डालना ये बिल्कुल ही आधुनिक विधि है
1: जी।
0: इसको हम परंपरागत का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल है
1: जी,
0: क्योंकि गोबर की खाद एक ऐसा संतुलित भोजन है फसलों का और मिट्टी का
1: जी,
0: कि इसमें सारे तत्व जितने भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, 17 पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से दूध संतुलित आहार है मनुष्य के लिए, गोबर की खाद ठीक उसी तरीके से एक संतुलित आहार है पौधे के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो गोबर की खाद या किसी भी प्रकार की जैविक खाद एक संतुलन बनाते हुए फसल के उत्पादन को बढ़ाएगी, मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाएगी।
1: वो एक और बात आती है जैसे हमारे मृदा स्वास्थ्य है जो
0: जी जी, जी।
1: उसकी फसल प्रबंधन हेतु किसान भाइयों को क्या सलाह है, आपके क्या उद्देश्य है या कैसे करना चाहिए?
0: मृदा स्वास्थ्य और फसल प्रबंधन में केवल इन्हीं सब चीजों का जो पूर्व में हम अभी चर्चा करते चले आए हैं कि सबसे पहले तो एक कहावत है अंग्रेजी में
1: जी,
0: प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर
1: जी,
0: बीमारी से बचाव बेहतर है। तो अगर हमारे किसान भाई ऐसा कुछ उपाय करें,
1: उपाय करें कि मतलब
0: समस्या ही ना,
1: समस्या ना,
0: हमारे उर्वरता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल उर्वरता ही ना कम हो और उसका जो गुण है वो भी ना कम हो, तो सबसे पहले ये है कि इसको रोका कैसे जाए। वही बात आती है मिट्टी की जांच, कितनी जरूरत है और कितना देना। तो सर्वप्रथम मिट्टी की जांच करें और मिट्टी की जांच के बाद ही उर्वरक की संस्तुति करें, खाद की संस्तुति करें, कितनी किस चीज की जरूरत है, पौधे की कितनी जरूरत है, मिट्टी में कितनी कम है, तो पौधे की जरूरत के मुताबिक और मिट्टी की स्थिति के मुताबिक उर्वरकों का और खाद का प्रयोग करें, मृदा सुधारकों का प्रयोग करें, जिस चीज की कमी हो उसको दीजिए, बेहतर और स्थायी फसल उत्पादन।
1: डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे किसान भाइयों से आपकी क्या सलाह है?
0: किसान भाइयों, बस इस प्रसारण के माध्यम से, इस आकाशवाणी के माध्यम से मेरी एक सलाह यही है कि उर्वरकों का प्रयोग या मृदा सुधारकों का प्रयोग या फसल प्रबंधन के किसी भी आयाम में
1: जी,
0: मृदा की जांच निश्चित रूप से करें
1: जी,
0: फसल चक्र के नियमों का पालन करें
1: जी,
0: यानी फसलों को हेर फेर करके बोएं
1: जी,
0: एक ही खेत में बार बार मसूर मटर ऐसा करता ही न करें
1: जी,
0: दलहनी के बाद अदलहनी
1: जी,
0: और ये भी ध्यान दें कि गहरी जड़ी फसलें गहरे, अगर पहले आप गहरी जड़ वाली फसल बोलते हैं तो अगले साल उथली जड़ वाली बो दे, फसल चक्र के नियमों का पालन
1: पालन

0: और मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा फसल अवशेष, हरी खाद और जैविक खादों का प्रयोग करें। मिट्टी के जांच के मुताबिक ही उर्वरकों की का प्रयोग करें, जिससे कि किसी भी प्रकार का हमारे प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल में हानि न हो और उत्पादन बना।
1: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, निश्चित है कि आपने इतनी बड़ी जानकारी दी कि हमारे किसान भाई से जरूर लाभ लेंगे। डॉक्टर हलीम खान जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इससे निश्चित है कि हमारे किसान भाई जरूर लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार विपिन जी।
2: किसान भैया, अबे अपन कितनी उम्दा भेड़ वार्ता सुन रहे थे। मृदा में पोषक तत्वों की का संरक्षण विषय पे डॉक्टर हलीम खान से विपिन बिहारी तिवारी की बातचीत। और पुष्पेन भैया, अब बात करत के अपने किसान भैया आ रहे हैं जो खरीफ के मौसम में बिलासी किसान भैया ऐसे हैं कि भी धान की खेती भी करत।
3: बिल्कुल।
2: तो धान की खेती के लाने अबे अपने किसान भैया खेतन की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि मेड़बंदी कर रहे हैं, मेड़बंदियां डाल रहे हैं, क्यारी बना रहे हैं। और कछु किसान भैया आ रहे हैं तो देखो नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं।
3: और देखो नर्सरी हम किसान भैया से क्या चाहते हैं कि समय पर नर्सरी डाले। कैसे नर्सरी तैयार होने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं, तो इसे हमारे किसान भैया बिल्कुल अगर देख लेंगे कि मानसून इतना लेट है और हमें धान की खेती करने तो प्रयास जो करें कि जिन किसान भैया के पास संसाधन है पानी के, ट्यूबवेल है, उतने नर्सरी बना ले इकट्ठी और वहीं से बांट ले हुए कि भैया 2 एकड़ की हमारी हो गई, 1 एकड़ की हमारी हो गई, आधा एकड़ की, जिनके पास संसाधन है, व्यवस्था है, तो नर्सरी हमें से तैयार करें तो समय पे जो है कि अपन का पौध मिल जाए। और फिर ये बात आउट है कि प्रजातियां हमें अच्छी प्रजातियां लेने। इसके संगे संगे अपन का बता दें कि बुंदेलखंड में जो हमारे किसान भैया धान कर रहे हैं उनमें ज्यादातर बासमती धान करा थे, सुगंधित करा थे और अच्छे दाम पे बिका थे। इनमें भी अच्छी प्रजातियां हैं, तो प्रजातियों को चयन हमारे किसान भैया करें। और इतने ज्यादातर हमारे किसान भैया 17, 18, 11, 21 यही लगाए थे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कछु बासमती की अच्छी प्रजातियां हैं भी लगा सका थे। पूसा सुगंध 3 है, इनके संगे संगे बासमती 370 है, DRR 310 है,
2: मकराम है, NDR 359 है और CSR 10 है।
3: बिल्कुल, ये अच्छी प्रजातियां हैं, तो किसान भैया प्रयास करें कि अच्छी प्रजातियां ले आए और ई के बाद किसान भैया खेती करें तो निश्चित फायदा होगा।
2: और पुष्पेन भैया, एक बात को और किसान भैया ने ख्याल रखने, जैसे खरीफ में जो बीजन की उन्होंने तैयारी कर रखी, चाहे जो किसान भैया आ रहे हैं तिल की बुवाई कर वो सोच रहे या मूंगफली की या उड़द की या सोयाबीन की, तो बुवाई से पहले उन्हें एक बात को ख्याल रखना है कि बीज उपचारित जरूर करने, और बीज उपचारित करवे की विधि अपन पहले बता चुके। तो अब अपन किसान भैया से और बतकाव करें, लेकिन मन कर रहा होगा कछु मनोरंजन हो जाए। तो किसान भैया को उमदास जो वृक्षारोपण पे आधारित एक लोकगीत सुना रहे, जीखे गावे भैया है नरेश और उनके संगी साथी। तो सुनो किसान पंच भैया, अपन वो रहे और हम भी सुने।

के बेरचा कोई कमाओ।

0: किसान पंच भैया और अब अपन हो रहे हैं। कितना उमदा जो लोग गीत सुन रहे थे, जीखे गावे वाय भैया आते नरेश व उनके संगी साथी। तो भैया और ने कितनी नौनी सीख दी कि अपन है पेड़ लगाने, बरसात को मौसम देखो अब समझो के मानसून आवे वाला है, तो अपन है तैयारी करके रखने, गड्ढा खोद लेने और जैसे ही पानी बरसे और देखो अपने है नए पौधा जरूर रोपने उनमें। और पुष्पेन भैया, अब अपने किसान भैया आए हैं चलत चलत अपन जई के वो चाहते है कि मौसम के देखत भाई, कैसे आज के समय में मोबाइल को योग है, तो मोबाइल से अपने किसान भैया आ रहे हैं अपने स्थानीय जो मौसम है उत्ते की जानकारी लेके और खेती बाड़ी के काम करने।
1: बिल्कुल।
0: और आप कार्यक्रम को समय भी पूरा हो रहा हो तो किसान भैया से अपन जो के वो चाहते ही चलत चलत कि किसान भैया रो आकाशवाणी झांसी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, तो के कमेंट बॉक्स में अपन अपनी प्रतिक्रिया दे सकत, बता सकत कि अपन का कार्यक्रम कैसा लगो। और आकाशवाणी झांसी के नाम से यूट्यूब चैनल भी बनो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकत और सुन भी सकत। तो अब अपने भैया संतोष पाल और
1: पुष्पन भैया का अनुमति दो।
0: नमस्कार।

व्यक्तियों के संबंध में सूचना। नाम व पता गुमशुदा का इस प्रकार है। गुमशुदा श्रीमती अर्चना, पत्नी मोहित, उम्र है 30 वर्ष, निवासी है राजगढ़ थाना प्रेमनगर जिला झांसी से। शारीरिक बनावट व हुलिया है, रंग गेहुआ, आंख कान नाक औसत है। उम्र व कद है, उम्र है 30 वर्ष, कद है 5 फीट। पहनावा है सूट सलवार ब्राउन कलर का। अतः अनुरोध है इनके संबंध में जिस किसी को भी सूचना प्राप्त हो, कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:19 पर, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा खुशबू माटी की 7:30 से। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जो कि आधारित होगा एक ही गीतकार पर, जिसमें आज के गीतकार हैं आनंद बख्शी। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 10:30 पर, और रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, ये था आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म से।

श्रोताओं, ये गीत आप सुने थे दिलतन से, आवाजें थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था आनंद मिलन ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किक फिल्म से। मीट प्रोस अनजान के बोल हैं और सलमान खान श्रेया घोषाल के। गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है मीट प्रोस अनजान ने।

0: है भैया, कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
1: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: हैं? अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
0: अरे भैया, हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठत है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया, प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया, तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने में। अब गीत आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ है फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और कुमार शानू की आवाज है और गीत को लिखा है देव कोहली ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे हम साथ साथ हैं फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण कुमार शानू की आवाज में। गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने।

0: ये गीत आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे हमराज फिल्म से। महेंद्र कपूर की आवाज में गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया था रवि ने। इसी गीत के साथ ही नए पुराने गीत सुहाने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम 10 रूपए और अधिकतम 50 रूपए में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत

0: सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
2: बहुत ही दुखद घटना है। हमारे जीवन परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रूपये की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
0: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
3: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
5: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
4: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन

air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर

0: अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रूपये और अधिकतम 50 रूपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रूपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
1: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम 10 रूपये और अधिकतम 50 रूपये में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम में पहला गीत आपको साक्षरता गीत सुनवा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा की आवाज में।

0: श्रोताओं, ये देवी गीत आप सुन रहे थे सुशीला देवी अहरवार की आवाज में। अगला लोकगीत आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कीट और भैया खरपतवार से परेशान है
2: अपन को भैया अनमने दिखा रहे।

0: बात है
1: भैया, एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: है अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेकर 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया परेशान।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम में ये आखिरी लोकगीत आप सुन रहे थे धर्मेंद्र पाल की आवाज में। इसी के साथ ही खुशबू माटी की ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

एफएम 101 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण।
1: अरे सुनती हो, कहाँ हो?
2: अरे यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं,
3: लगता है सब कहीं गए हैं।
2: नहीं नहीं, गए नहीं होंगे, यहीं होंगे। अच्छा ठहरो, मैं आवाज देता हूँ।
1: सरला, ओ सरला,
4: कौन है?
1: मैं हूँ, किवाड़ खोलो।
4: आती हूँ।
5: क्या बहुत देर से पुकार रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया?
2: नहीं नहीं, अभी ही आए हैं, तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
5: हाँ, मुन्ने को सुला रही थी।
2: अच्छा छोड़ो, देखो तो, ये देखो कौन है।
3: नमस्ते भाभी जी।
5: नमस्ते भाई साहब।
2: भाई वाह, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय?
5: परिचय करवाओ तो।
2: तो लो सुनो, देखो ये है मेरा लंगोटिया यार प्रेमेंद्र। जब हम छोटे थे ना तो समझो एक प्राण और दो शरीर थे।
3: पर भाभी जी, इस प्राण को इस निर्मोही ने निकाल फेंका था।
5: अच्छा? वो क्यों?
3: क्योंकि मैं
2: क्योंकि व्योंकि छोट है, क्या फिर झगड़ेगा?
3: नहीं।
2: और सरला क्या बाहर ही खड़ा रखोगी?
5: अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। आइए आइए, अंदर आइए।
2: चल भाई अंदर चलो।
5: बैठिए भैया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ।
2: हाँ हाँ, कहाँ जा रही हो?
5: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आऊँ।
3: चाय का कष्ट मत कीजिए भाभी जी, बैठिए ना।
5: अरे वाह, इसमें कष्ट भला कैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुँह दिखाई भी देनी है ना।
3: मुँह दिखाई? अच्छा।

0: समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह, क्या कहना है भाभी जी, आप तो बहुत बड़ी व्यंग्यकार हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे मुंह दिखाई देनी है।
1: सुन लिया ना, ये प्रेमेंद्र भी कम नहीं। अच्छा सरला तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
2: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
1: और सुना यार प्रेम, कामकाज कैसा चल रहा है?
0: कामकाज कैसा यार, भाई मैं तो सरकार का फेथफुल सर्वेंट हूँ। गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। अमा तुम सुनाओ क्या ठाट है?
1: अपना भी ठीक ही चल रहा है भाई, जीवन गुजर ही रहा है। अच्छा तू एक बात बता, तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था?
0: भाई वहाँ एक लड़की काम करती है, मिस मित्रा, उसी से
1: मिलने गया था। यही ना, देख प्रेम तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे झगड़ा हुआ था?
0: रहा झक्की का झक्की। अबे पहले बात तो सुन ले पूरी।
1: अच्छा सुना
0: है? अरे भले मानस, पता है या नहीं परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है।
1: हाँ, वो तो पता है। तो भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध है?
0: संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास। हाँ। और कहीं मिल ही नहीं रहे थे।
1: अच्छा है छोड़। अरे सरला चाय ले आई?
2: हाँ चाय ले आई, देखो जरा वो टेबल पास कर दो ना।
1: अच्छा लो ये लो।
2: लीजिए चाय लीजिए।
0: वाह भाभी जी, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, लगता है आप बहुत सुखद गृहिणी हैं।
2: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, इनके दृष्टि में तो मैं बैड हाउसवाइफ हूँ।
0: क्यों भाई कृष्ण, क्या ये बात ठीक है?
1: ना यार छोड़ो भी, क्या बात ले बैठे, ले ले और खा ले, लेके खा।
0: अरे नहीं,
1: अबे और लेना
0: है? बस बस कुछ नहीं, अब मैं जाऊंगा।
1: जाएगा? अबे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठ।
0: नहीं नहीं कुछ काम है, अब तो मैं आता ही रहूंगा, परसों तो मिलेंगे ही।
1: परसों?
0: हाँ परसों। लीजिए भाभी जी।
2: क्या है?
0: परसों लोक नृत्य का शो है ना। हाँ, उसके 2 टिकट हैं ये।
1: देख भाई प्रेम, ये तो तूने अपने लिए खरीदे हैं ना, ये रहने दे, हमें जाना होगा तो हम और ले लेंगे।
2: हाँ भाई साहब, ये ठीक ही कह रहे हैं।
0: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ बीबी और 2 बच्चे 4 टिकट लिए थे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वैसे 2 टिकट और मिल जाएंगे, लीजिए ना। और ये तो आपकी मुंह दिखाई है।
1: क्यों नहीं, अबे टाल दे सस्ते में। अच्छा भाई सरला, ये टिकट ले लो, नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो वो रुपए ले आओ।
0: रुपए? अबे कैसी बातें कर रहा है तू, क्या रुपए देने के लिए मैंने टिकट दिए हैं?
1: वो तो मैं जानता हूँ भाई, पर भाई प्रेम मैं इस सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है रुपया। जाओ सरला वो रुपए ले आओ।
2: जी अच्छा।
0: यार मन खराब कर दिया तूने, भला कभी प्यार भी पैसों से तोला जाता है? कितने मन से टिकट दिए थे मैंने।
1: मैं जानता हूँ दोस्त, तेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था,
0: पर क्या?
1: पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तौल ही देता है। यार पैसा तो आदान प्रदान मांगता है ना। अच्छा खैर ये प्रसंग छोड़, आदरा गले तो लग जाए, कितने वर्षों के बाद मिला है।
0: तू बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार, पर इस बार
2: इस बार क्या भाई साहब, लीजिए ये लीजिए रुपए।
0: जैसी इच्छा भाभी। अच्छा तो मैं चलूं भाभी जी।
2: नमस्ते भैया, कभी बच्चों वगैरह को लाइएगा।
0: हाँ जरूर लाऊंगा भाभी जी। अच्छा कृष्ण,
1: अच्छा अच्छा कुछ नहीं भाई, चल तुझे घर पर ड्रॉप कर दूं।
0: नहीं नहीं मुझे अभी बाहर जाना है।
1: तू वहीं से ही चल।
0: अच्छा चल, तू ही जीता मैं हारा।

0: अब सो गया। सोना तो जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन नहीं सोना चाहता है?
0: यही मुन्ना, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधम। मैं तो तंग आ जाती हूँ।
1: तंग आ जाती हो? अरे भारतीय नारी का तो जीवन ही बच्चे हैं, वो तो कभी तंग नहीं आती।
0: लो और सुनो, इसमें भला भारतीय नारी की क्या बात है?
1: यही कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं और वो तो बच्चों को छाती से चिपकाए रहती है, सुख में दुख में।
0: बस बस बस, मैं सब समझ गई। अच्छा एक काम करोगे?
1: काम? अजी तुम कहो तो जान भी हाजिर है।
0: बातें मत बनाओ, सुनो।
1: हाँ?
0: गीता और महेश तो बड़े हो गए हैं, उनका तो अब सहारा ही है। मीना और बिट्टू भी स्कूल चले जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो यही कि रमा और मुन्ना, उनमें से एक को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाए।
1: क्या कहा, ऑफिस ले जाए?
0: मुझ में तो अभी हिम्मत नहीं रही कि इतना बोझ संभाल सकूं।

0: ऑफिस ले जाया करो। कमाल कर दिया तुमने सरला। अरे तुम अगर हिम्मत हारोगी तो ये बच्चे पलेंगे कैसे?
1: मैं क्या जानू, तुम पालना, तुम भी तो बाप हो इनके।
0: अच्छा भाई चलो मैं ही पाल लूंगा, तुम खुश रहो। अच्छा अब तो सो जाओ, देखो सरला मुझे नींद आ रही है।
1: तो सो जाओ ना, मैं क्या रोक रही हूँ तुम्हें, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी।
0: अच्छा अच्छा गुड नाइट डार्लिंग।
1: नहीं नहीं सुनते हो?
0: ओफो क्या है?
1: मुझे नींद नहीं आएगी।
0: क्यों, क्या बात है जो नींद नहीं आएगी?
1: चिंता हो रही है।
0: कैसी चिंता?
1: गीता और महेश की फीसें देनी है।
0: तो दे देना।
1: पर दूंगी कहाँ से, यही तो समस्या है।
0: क्यों, रुपए तो उनके लिए अलग ही रखे थे ना।
1: 50 रुपए टिकटों के जो दिलवा दिए, आप तो कुछ सोचते ही नहीं, मतलब क्या जरूरत थी टिकटों की। उफ, मेरा तो चिंता से बुरा हाल हो गया है, फीस देना भी बहुत जरूरी है।
0: क्यों चिंता करती हूँ सरला, सब ठीक हो जाएगा। और फिर टिकटों के रुपए तो देने ही थे ना, तुम ही कहो भला मुफ्त में टिकट ले लेता।
1: ओफो तो मैं कब कहती हूँ कि मुफ्त में टिकट ले लेते, टिकट लिए ही क्यों।
0: लिए ही क्यों, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती करवा लेता? वो तो बच्चों के लिए टिकट ला सकता है, और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता।
1: हाँ हाँ नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं।
0: फिर कुछ नहीं होगा सरला, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर न जाने तुम कहाँ फूंक देती हो।
1: फूंक देती हूँ? नहीं नहीं मैं खा लेती हूँ।
0: कुछ तो करती ही हो सरला, प्रेम को ही देखो ना, मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। बीबी सुघड़ है इसीलिए ना।
1: हाँ हाँ मैं ही फूहड़ हूँ, ये नहीं सोचते कि उसकी गृहस्थी छोटी है, कुल 4 प्राणी और यहाँ इतना बड़ा परिवार, उसके लिए नौकर भी जरूरी, घर की चिंताओं ने तोड़ डाला है मुझे तो। आगे पुरुष होना, पल्ले झाड़कर अलग हो गए और दोष मेरे मत्थे मर गया।
0: अच्छा बाबा माफ करो, चलो दोष मेरा ही सही, अब सोने दो मुझे।
2: साहब क्या है, बाहर कोई प्रवीण साहब आपसे मिलने आए हैं।
0: अच्छा अच्छा उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो। अरे प्रेम आओ आओ आओ भाई आओ। है
3: क्या, उसी से मिलने आए हो?
4: हाँ कृष्ण उसी से मिलने आया था और मिल भी लिया, यार मन आनंदित हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है।
4: अबे तो जलता क्यों है, उसने बड़े प्यार से 2 टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा।
0: क्या कहा?
4: आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे आनंद मिलेगा।
0: अच्छा अच्छा बहुत ठीक, मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता भाई, हाँ शाम का क्या प्रोग्राम है?
4: प्रोग्राम क्या, वही मिलेंगे?
0: नहीं भाई सुन, शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए शो में चलेंगे, तो ठीक है ना?
4: हाँ हाँ बहुत ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पदार्पण हो जाएगा।
0: तो भाई बात पक्की है, ठीक 6:45 हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ओके
4: ओके ओके ठीक 6:45।
0: हाँ भाई।
5: अरे सरला अरे कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई?
0: ओफो देर ना हो जाए कहीं। रामू ये क्या है?
6: जी चाय।
0: अच्छा चाय को बाहर रख दो, और देखो मैम साहब को जल्दी भेजो।
6: जी हाँ
0: मैं चाय पीता हूँ, तू जरा जल्दी कर। सरला अरे ओ सरला,
6: ओहो तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए, मैंने तो पहले ही फोन कर दिया था।
1: तैयार होने में कौन से युग लगते हैं, पर मुझे तो तैयार होना ही नहीं है।
0: क्या कहा, तैयार होना ही नहीं है, क्या कह रही हो तुम ये?
1: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मुन्ने को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप ही नहीं होता, तुम ही बताओ ना मुन्ने को छोड़ो।
0: मुन्ना मुन्ना तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने को एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
1: कैसी बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है, परंतु
0: देखो देखो सरला परंतु कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ 10 मिनट में तैयार होकर चली आओ।
1: ओफो तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर भला कैसे जाऊं?
0: मुन्ने को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊं? ओफो गीता संभाल लेगी ना उसे, अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, वो आके देख जाएंगे।
1: आकर देख जाएंगे, फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, कल ही शाह बनकर 50 रुपए फूंक दिए।
0: क्या कहा, फूंक दिए? हे भगवान ये क्या जाहिल और गमार मेरे भाग में लिखी थी, पुण्य 20 रुपए जिंदगी दूभर हो गई है, अब तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
1: घर छोड़कर चले जाओगे? तुम क्यों जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ, अनपढ़ जाहिल गंवार का तुम्हारे जैसे साहब के घर में भला क्या काम है, शादी से पहले मैं ही चांद की किरण और फूल से सुकुमारी थी ना।
0: हाँ हाँ ठीक यही बात है, तब तुम कुछ और ही थी, तुम तब मेरे साथ चांद तक जाने को तैयार रहती थी, और अब
1: हाँ, अब क्या हो गया है?
0: अब क्या नहीं हुआ है, अब तुम्हें मेरे मान और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है, तुम ही बोलो प्रेम क्या कहेगा, उसकी मिसेस क्या कहेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुनाओ मैं जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा इस घर में।
4: आओ आओ कृष्ण, देर हो गई।
0: हाँ देर हो गई।
4: हाँ भाभी।

0: जी कहाँ हैं? क्या गाड़ी में बैठी हैं?
1: नहीं गाड़ी में नहीं, घर में बैठी हैं।
0: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या? अरे बात तो बता।
1: बात कुछ नहीं भाई, मुन्ने को बुखार था, बस सरला नहीं आ सकी।
0: अरे मुन्ने को बुखार है तो तू आया क्यों? अबे फोन कर देता। अजय सुनती हो?
2: क्या है? नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कहाँ है?
1: वो नहीं आ सकी है, छोटा बच्चा बीमार है।
2: हैं? भाई साहब तो आपने फोन कर दिया होता, हम वहाँ आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। भाई बाप प्रेम, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा के योग्य हैं।
0: कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है। कमला से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अमा किस वस्तु का भाव है तुम्हें?
2: ये बातें तो फिर होती रहेंगी, चलिए घर चलिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी। प्रोग्राम का क्या, वो तो होते ही रहते हैं।
1: नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है।
0: सब संभाल लेती है ये बात अलग है, पर तुम्हें तो हर कार्य में उनका साथ देना चाहिए।
2: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
1: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं।
0: दिमाग तो खराब हो गए, पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी, अब इसका उपाय क्या है? जितने परिवार के प्राणी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियाँ, झगड़ा और खर्चा पड़ेगा।
1: पर इसका उपाय भी तो होगा प्रेम।
2: उपाय यही कि सब समस्याओं का समाधान आपसी सहयोग ही है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में सामंजस्य रखिए।
0: हाँ दोस्त ये ठीक कह रही हैं, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए।
1: कहता तो तू ठीक है, वास्तव में मैं पलायन वृत्ति को अपनाता जा रहा था,
0: और यही विषाद का मूल कारण है। अच्छा चल भाभी जी के पास चले।
1: नहीं नहीं चलो, तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा अपनी सरला के पास।
0: बहुत ठीक, यही है सामंजस्य की भावना, पति और पत्नी का पूर्ण सहयोग।

तो ये थी नाटिका चांद की किरण, लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही गीतकार पर, जिसमें आज के गीतकार हैं आनंद बख्शी। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज है उदित नारायण और लता मंगेशकर की, संगीत दिया है राहुल शर्मा ने।

0: कार्यक्रम में आगे भी और आपको और भी गीत सुनवाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है।

0: रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोतो, ये गीत आप सुन रहे थे मिलन फिल्म से। इस गीत में आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

14वां कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे। मेरे हमसफर फिल्म से आवाज थी लता मंगेशकर की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित था एक ही गीतकार कलाकार पर, जिसमें आज के कलाकार थे आनंद बख्शी। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी

0: अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियांग के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र

0: उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisers and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Deva Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: एक दूजे के लिए इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। इंग्लिश।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में, कभी उस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में गौंद गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही दे।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदनपुरी और ओम शिवपुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होकर बी आर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार ने

राजबब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राजबब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलके। जन्म

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कला मंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रिपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारून जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने।

और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली, पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दी गई, पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए, जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, जिनमें हम 5, कलयुग, राज और पूनम है।

प्रेम गीत, ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवंत किया है। आप अपनी कला से सेल्यूलाइट पर हमेशा

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: म्यूजिकल सर
1: साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।
3: खेल दर्पण।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाली साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे। उसमें बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा, बच्चों का पढ़ाई से और पेरेंट्स को हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए। जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि

0: ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आपके अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 इयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। गर्ल्स, हम ऐसा नहीं करते फाइट, जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए, तो ये है ही अच्छी चीज।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग, तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों के स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
0: जी, तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता। तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छोड़ भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
0: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो? अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे मैं शुरू करूं कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
1: 5 साल
0: से जी। तो आप ही मान लीजिए, तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस, चॉकलेट, चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूंगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट ए टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में, क्या नहीं खाना है, तो ये चीजें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
0: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती है?
1: मैं हूँ क्योर्गी। हमारे अब जो ताइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी, एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है, तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट जी। तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट, यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहां उनको मारना है, कहां कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीजें बताई जाती है।
0: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है कुछ इससे, तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे
1: जी।
0: तो इस तरह की सुविधा यहाँ पर है?
1: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है, यहाँ पे हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी 1 साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारे यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी, कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
0: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
1: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
0: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही

0: की जिम्मेदारी,
1: सभी की कोच की जिम्मेदारी है।
0: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
1: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत इनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
0: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे?
1: नहीं, वेट एक दिन
0: तो
1: पहले हो जाते
0: हैं। घबराने कोई बात नहीं है, नहीं, नहीं। अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रॉल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
0: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
1: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है, तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंदी कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीजें खाने के लिए बोलते हैं, और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीजें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की बात, अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीजें बोलते हैं, स्पाउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम ग्वालापार गए थे यहां कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीजें, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा इस तरीके की चीजें, तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है।
0: साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं, अब आप मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया?
1: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है, तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो उन्होंने मोटिवेट किया, तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया उड़ीसा हो गया सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
0: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
1: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है।

0: और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: जी, तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने
1: जी
0: सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर है जो काफी सीनियर है, वो बुशान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे। तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था। हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है, हमारे विजय
1: जी
0: बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहां से भी हमारे बच्चे निकले, अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: जी तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें
0: बिल्कुल
1: बन सकता
0: बिल्कुल
1: है। एज
0: बिल्कुल
1: आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं
0: बिल्कुल
1: कहूंगा।
0: बिल्कुल
1: तो क्या
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं। हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है। तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहां से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहां सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं, मैं
1: जी
0: अपना
1: बिल्कुल,
0: बचाव खुद कर सकती हूं। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह। और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात याद है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही
1: रही
2: हैं, तो उनको देख के ही फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्पररी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है। तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज में एक्सेल करना है, अच्छे
1: जी
2: से बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप थी। और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं। लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहां पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता। तो ये मैं जानना चाहूंगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस।
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए। तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैंपियन बना मैं उस टाइम पे। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का।
1: जी
2: तो

0: फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया की बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
0: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहां पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहां पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
0: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज में अच्छे हो उस चीज के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारे एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहां पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफी काफी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में।
1: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं कि
0: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
0: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो प्लेयर्स को काफी सारी फैसिलिटीज, क्योंकि जो और कंट्रियां हैं वो काफी ज्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं।
1: जी,
0: तो एक उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले ही टैलेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है पर
1: मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट
0: चाइना।
1: आपका
0: हाँ,
1: चाइनीज था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहां उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूं?
0: वही गेम पढ़ना था उसका। सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहां पे एडवांटेज लिया, वहां से पॉइंट निकाला।
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत जरूरी है। कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था,
1: अच्छा,
0: कोरिया से मैं हार गया था।
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहां लैग करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था,
1: अच्छा,
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज्यादा, हाइट में भी बहुत ज्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
0: टेक्निक वाइज
1: आप
0: मैं कहूंगा
1: टैकल कर रहे थे
0: कि
1: मतलब उनको?
0: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
0: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफी सारी रेलवे, इन सब चीजों में जॉब मिल जाती है
1: जी
0: इजीली। हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम

0: भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए, तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में? यहाँ पे कोच
0: विक्रम भंडारी सर,
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं। तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफी डिफरेंट होती है, तो क्या चीजें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा, तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की। और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं इनके, साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
2: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
3: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
2: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए।

0: इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके। और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए। और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
1: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: दर्पण।
1: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति थी, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त हुआ। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी

करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।